आकाश पान जन शीतगुर का विविध धारे की मुझे है एफ एम टी से दशमलव आठ मेगा हर्ट्ज पर। आज दिन मंगलवार है, शुभ समय 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 12 तदनुसार 2 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:59 होने वाले हैं। आरंभ होती है आज की प्रातःकालीन सभा।

वाणी जिन विधियों की विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं उनके प्रदर्शन आज में बहुत सुबह के 6 बजे को ही हिंदी समाचार सुनने को सूचना है।

ऐसा चाहिए। नई दिल्ली में विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव दोनों नेताओं ने फलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की।

जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में छह श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश स्टेट निगम द्वारा गठित समिति

पहले 22 नौका चालकों

बुद्धि का ये कथन है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे आज ही तुम्हारी नई शुरुआत हुई हो। अतीत को क्षमा करो, भविष्य पर विश्वास रखो और वर्तमान में मुस्कुराओ। ये था आज का संदेश। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत।

संग्रहण में विविधता से राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीले भर गए। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 मिनट पर आप सुनेंगे श्रीराम चरित मानस गान भाग 207। 6:45 मिनट पर कार्यक्रम होगा संगीत कविता श्रृंखला सुने संगीत में कबीर का दौर। दूसरी कड़ी आज प्रसारित होगी। कलाकार है तबला वादक रविंद्र खासने। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं शाम 6:45 मिनट पर।

प्यार के और 8:15 पर विरोधी कार्यक्रम चित्रीलोक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर और सुबह 9:30 पर आपके फनकार कार्यक्रम होगा। फिल्मकार मणि रत्नम पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहत सामा दांतों की देखभाल इस विषय पर डॉक्टर जयेश

पर कार्यक्रम यादों की है फिल्म सुनीला सफर। ये कार्यक्रम सुनिए दिन में 1 बजे से और दिन में 2 बजे कार्यक्रम होगा। ये वेन्यू

शांति कार्यक्रम होगा। शायद 20 और 5 बजकर 30 मिनट पर तराने नए पुराने। शाम के बजकर 35 मिनट पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और शाम 7 बजे जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे का समय है हवा महल कार्यक्रम का। सुनिए झलकी ससुराल का नौकर। लेखक है संतोष श्रीवास्तव और निर्देशक राकेश ढोंडियाल। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक। रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए और रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फन का। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक और अभिनेता राज कपूर पर। रात 10 बजे कार्यक्रम होगा छाया जी। रात 10:30 पर ढलती जाए रात ये कार्यक्रम और

थी। मात्र दो ही कोस चल पाए थे कि दिन ढल गया। अतः उपयुक्त स्थान देख सबने बिना खाए पिए वहीं रात्रि विश्राम किया। उस रात सीता जी ने स्वप्न में देखा कि प्रभु के वियोग में भरत संतप्त शरीर लिए पूरे समाज के साथ वहां पधारे हैं। सभी लोग उदास और दुखी हैं। साधुओं की तीरथ बदली हुई है। सीता का स्वप्न सुनकर श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चित्त की शांति के लिए उन्होंने स्नान आदि करके त्रिपुरारी का पूजन तथा साधु संतों का सम्मान किया। देवताओं मुनियों आदि का वंदन कर श्री राम उत्तर दिशा में देखने लगे जिधर आकाश में धूल छा रही थी। पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते आ रहे थे। मन में चिंता हो आई, क्या बात है। उसी समय कोल भीलों ने भरत शत्रुघ्न के आगमन का समाचार सुनाया। श्री राम हर्षित हो गए। फिर ये सुनकर कि भरत शत्रुघ्न के साथ चतुरंगिनी सेना भी है, शंका हुई कि इस प्रकार उनके आने का क्या कारण हो सकता है।

Jesus, W.

0: जरूरत ख्याल डालती है जिस प्रकार से महसूस की गई और इसलिए तबला हाँ जो है बनाया गया और संगीत में उसका प्रचलन हुआ।
1: बिल्कुल
0: आज पहले तो ये बताइए कि फिल्म संगीत में तबले का आगमन कैसे हुआ।
1: वैसे तो महाराष्ट्र में फिल्म संगीत के पहले
0: जी
1: मतलब दादा साहेब फाल्के जी को फिल्म का जनक माना जाता है, तो उसके पहले महाराष्ट्र में नाट्य संगीत प्रचलित था। तो नाट्य संगीत जो है वो नाट्य संगीत मूलतः वो नाटक के साथ में संगीत है, लेकिन संगीत के श्रोता के लिए वहाँ पर संगीत का ही ज़्यादा माहौल है और नाट्य संगीत बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था महाराष्ट्र में फिल्मों के पहले। तो नाट्य संगीत में जो था वो तबला था और उसके बाद में फिर फिल्मों का दौर शुरू हुआ। तो फिल्में जैसे 1931 में आलम आरा जो पहली फिल्म है जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसमें बोलना
0: पहली बोलती फिल्म
1: पहली तो पहली बोलती फिल्म जो है तो उसके आगे फिर गाने आना शुरू हुआ फिल्मों में। तो उसमें जो है वो शुरू में फिर तबला ही था क्योंकि तबले का जो मतलब नाट्य संगीत का जो प्रभाव था वो शुरुआती हमारा जो फिल्म संगीत है उसमें वो दिखाई देता है। तो नाट्य संगीत में तबला था, फिल्मों में भी शुरू में तबला ही था, बाद में फिर एक एक वाद्य उसके साथ जुड़ते गए लेकिन शुरुआत में तो तबला ही था।
0: हमारे संगीत में गायन की जितनी विधाएं हैं उसमें जो तबला संगति की जाती है और फिल्म संगीत में तबला संगति की जाती है उसमें क्या अंतर है?
1: अभी देखो गायन में जो तबला संगत है तो हमारे पास गायन की कई सारी विधाएं हैं
0: जी,
1: उसमें प्रथमतः आता है शास्त्रीय संगीत, फिर उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि कुछ नाट्य संगीत का भी जो शुरुआती प्रभाव था महाराष्ट्र में, तो इस तरह का जो है गायन विधा जो है तो उसमें संगत के लिए हम तबला संगत करने वाले जो होते हैं संगतकार जो होते हैं वो संगतकार उनको एक मौका मिलता है, उसमें मौका गायक की तरफ से दिया जाता है
0: हाँ
1: कि एक हाथ मतलब वो छोटा ख्याल गा रहे थे
0: हाँ हाँ
1: तो छोटा ख्याल का वो जब ध्रुवपद से आते हैं तो वो तबला वादक को एक बजाने के लिए
0: अवसर देते हैं
1: जी। अब मान लो एक हम यमन राग की बंदिश अगर लेते हैं
0: जी,

0: पर मिलता है जो तबला वादक अपना स्वतंत्र तबला वादन की जो शैली है उसको थोड़ा सा पेश उसमें कर सकता है। जहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है जैसे सितार की संगत है या सरोद की संगत है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ में तबला संगत जब होती है तब उसमें और भी ज़्यादा अवसर मिलता है और उसमें तबला संगतकार अपनी जो शैली है वो दिखाता है। अब फिल्मी संगीत जो है उसमें ये चीज़ नहीं है, उसमें क्या है कि ठेका जो गाना चल रहा है उसका ठेका बजाना कहा जाता है कि जान खिड़की है फिल्मी गीतों में। जो ठेका बजता है वो ठेका उसी के वजह से उसमें जान आ गई है। तो इसमें क्या होता है कि केवल ठेका और उसके पैटर्न मतलब उसी को रिलेटेड जिसको हम लोग ताल का विस्तार कहते हैं तो ताल विस्तार की तरह से वो पैटर्न आते हैं लेकिन मूलतः उसमें ठेका होता है। स्वतंत्र वादन शैली जो है उसको उसमें नहीं लिया जाता। तो इस तरह से फिल्म संगीत और शास्त्रीय संगीत की संगत में फर्क है।
1: अभी उदाहरण के तौर पे आप क्या बताना चाहते हैं?
0: जैसे हम लोग अभी मान लो एक दादरा ताल में लेता हूँ, दादरा में अभी ये दादरा इस तरह से फिल्मी गीतों में नहीं बजेगा।
1: हाँ,
0: उसका जो रूप होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। वो किस तरह बदलता है कि उसको

0: पैटर्न बोले तो वो जो ठेका है उसी का विस्तार या उसी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करते करते जो गीत के अनुसार होता है, मतलब जो गीत में सौंदर्य प्रदान करने वाला जो ठेका है वो उस तरह से उसका उपयोग फिल्मी गीतों में किया जाता है।
1: तो ठेके का जो ये बदला हुआ स्वरूप है, रिदम पैटर्न कहा जाता है।
0: जी जी,
1: ये हम किसी गीत को उदाहरण के रूप में सुन सकते हैं?
0: हाँ सुन सकते हैं। अभी हम लोग जो है वो मेरे ख्याल से एल सैगल साहब का ही गाना मैं क्या जानू क्या जादू है,
1: जिंदगी जी जादू।
0: हाँ, तो इसमें जो है ना वो तीन
1: तार,
0: और तीन तार वो पुराने जमाने में वो ढाला तबला होता था, मतलब सुर का तबला। जैसे हमारे ऑक्टेव होते हैं ना, तीन ऑक्टेव, तो इसमें जो नीचे का है खरज वाला तो उसमें सुर का तबला बजता है, और फिर टीप का तबला मतलब ऊपर वाले ऑक्टेव में तार स्वरों में।
1: जी,
0: तो पहले वो सुरों के तबले का प्रचलन था और सुर का तबला जो है वो संगत के लिए लेते थे। तो तीन ताल है, लेकिन तीन ताल में भी बड़ी नज़ाकत है। उसमें भी मैंने जो कहा कि ठेका जान छिड़कने वाला होता है, तो वो गाने में कैसे प्राण भरता है, वो इसके लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है।
1: क्या बात है, आइए सुनते हैं।

श्रृंखला की ये दूसरी कड़ी अब संपन्न हो रही है। तीसरी कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे। आगे दीजिए नमस्कार।

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆವಾಸನ್ನು ಪತ್ರದ

0: वृत्त किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: देश की शुरू हुई संस्कृत विविध भारती से कार्यक्रम जारी है भोले के स्वर। आज इस फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में बैसाख लखनवी के बोल संगीत है राम

0: 想的是，在这里和世界的沟通，还是最可能是亚洲最美丽。马上为国立的阿基尔大学留你。दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के गीत।
2: बधाई हो बधाई
0: जन्मदिन की तुम। गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। मुझे विश्व गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनाने जा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में सत्र जयपुरी का लिखा हुआ गाना संगीत है

प्रियंका जी का नाम आपने सुना, आशा भोसले और मुकेश की आवाज में। अब आपके लिए लेकर आए हैं कल आज और कल। इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा शैली शैलेंद्र है और धुन बनाई।

मनुष्य के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह है। समय का पहिया घूमता है तो कभी सुख आता है तो कभी दुख। सुख का समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन दुख का समय बेहद लंबा और कष्ट भरा मालूम होता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है, इसमें घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना ही समाधान है। जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा लाभ है, ये हमें अपने व्यक्तित्व में अंदर झांकने और उसे मजबूत करने का मौका देता है। दुख हमें अपने सच्चे और झूठे रिश्ते नातों और दोस्तों के असली चेहरे

संकट आता है और अधिकांश लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब अपनी सहायता ईश्वर के अलावा हम स्वयं करते हैं। हमारा दृढ़ निश्चय और हमारी सकारात्मकता हमें जीवन के तूफानों में भी भटकने नहीं देती। अंधेरी सुरंग कितनी भी लंबी हो, उसके अंत में प्रकाश की किरण मिलती ही है। रात कितनी ही काली क्यों न हो, जीवन में सुख की सुबह होती ही है।

को हम अपने संयम धैर्य और विवेक से बड़ी सहजता से परास्त कर सकते हैं। और जब हम अपनी कर्मठता से अपने पुरुषार्थ से परिस्थितियों पर विजय पा लेते हैं तब हमें अपने आप पर गर्व भी होता है और उस पल को हम उत्सव से कम नहीं समझते।

जीवन को जितनी सहजता से लेंगे उतना ही हमारा मन शांत रहेगा और हम अपने धैर्य और विवेक से दुखद परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश।

Thank you.

0: की रंगोली जैसे की कनक यादों की महक बातों में भूलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के गीत।
2: बधाई हो
0: जन्मदिन के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल के बाद। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: दोस्तों, विविध भारती का एक बहुत ही जाना माना कार्यक्रम है जिन्हें लोग पसंद करते हैं सखी सहेली कार्यक्रम, जिसके आज वर्षगांठ है और विशेष कार्यक्रम आप 3 बजे सुनेंगे, ये तो हम आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ आज सुप्रसिद्ध फिल्मकार मणिरत्नम का भी जन्मदिन है, उन्हें बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तमिल व हिंदी दोनों भाषाओं में उन्होंने फिल्मों का निर्माण किया है। हिंदी फिल्मों की अगर बात करें तो रोजा, बॉम्बे, दिल के साथिया, युवा गुरु, इन फिल्मों को हम याद कर सकते हैं। निर्देशन के अलावा उन्होंने लेखन का भी कार्य किया है, संगीत की भी गहरी समझ है। उन्होंने अपनी फिल्मों के किरदारों में संस्कृति और भावनाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से उतारा है। उन्हें जन्मदिन पर हम शुभकामनाएं देते हैं और रोजा फिल्म के गाने की एक झलक

शायद सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने घूम गए होंगे। चलिए अब हम चित्रलोक कार्यक्रम के अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। लुटेरा फिल्म का गाना मोनाली ठाकुर की आवाज में, मीता भट्टाचार्य की बोल, संगीत है अमित त्रिवेदी का।

शिक्षिकी ने कार्यक्रम दिव्य शांति से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों आज संगीतकार इलैयाराजा का जन्मदिन है, उन्हें भी हम शुभकामनाएं देते हैं। संगीतकार, संगीत रचयिता, संगीत संगठनकर्ता, कंडक्टर, ऑर्केस्ट्रेटर, बहुवाद्य यंत्रक, वादक, गीतकार और पार्श्व गायक हैं वो। और मुख्य रूप से उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों के लिए कार्य किया है और उन्हें विपुल संगीतकारों में से एक माना जाता है। 39 वर्षों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने 8,600 से अधिक गीतों की रचना की। 9 भाषाओं में लगभग 1,523 फीचर फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया है और लोग उन्हें प्यार से मास्टरो कहते हैं। तो एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। और अब शमिता फिल्म का गाना

0: मिलते आंगन में सजे हुए खुशियों की रंगोली हंसी की चमक यादों की महक बातों में भूलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ

मौसम का इस्तेमाल सिनेमा की उन प्रतिभाओं में होता है जो फिल्म के माध्यम से बहुत असरदार तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं। यूं तो मणिरत्नम का ताल्लुक दक्षिण भारतीय सिनेमा से है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि भारत और भारत के बाहर भी है।

कुछ छप्पन में मद्रास यानी चेन्नई में जन्मे मणिरत्नम ने अपनी पढ़ाई मद्रास यूनिवर्सिटी में की और उसके बाद मुंबई के बजाज इंस्टीट्यूट से ली मैनेजमेंट की डिग्री। फिल्मों की दुनिया में आने से पहले मणिरत्नम एक प्रबंध सलाहकार थे। मणिरत्नम के पिता गोपाल रत्नम और भाई वेंकटेश्वरन भी फिल्म निर्माण से जुड़े हुए थे। जाहिर है ऐसे में फिल्म माध्यम से उनका

कुछ खास नहीं कर पाए। मणिरत्नम सिनेमा की दुनिया में सत्ताधारी पीछे में कामयाब रहे। 1986 में सिर्फ मौना राघव बनाकर इसके सितारे थे मोहन, रेवती और कार्तिक। मणिरत्नम की अगली फिल्म थी गॉडफादर से प्रभावित नायकन, जो 1987 में आई। पिछले फिल्म ने आभार दे दिया कि मणिरत्नम आने वाले दिनों में फिल्म निर्माण और निर्देशन के नायक बनने वाले हैं। इस फिल्म ने यहाँ प्रतिभा के धनी कमल हासन को दिलाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। वहीं मणिरत्नम को इस फिल्म ने पहुंचा दिया सिनेमा के अग्रणी निर्देशकों की।

जिससे समय सिनेमा को दिया सिनेमा का एक नया विजुअल स्टाइल। 1989 में मणिरत्नम लेकर आए गीतांजलि और फिर 1990 में आई उनकी एक दिल को छू लेने वाली फिल्म अंजलि। लेकिन पूरे भारत में मणिरत्नम को ख्याति दिलाई कश्मीर के आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर बनी एक लव स्टोरी रोजा नहीं।

सिनेमा से बेहद सम्मानित फिल्मकारों में होती है। उनके कठोर कथन में बारीकी और गहराई दोनों होती है। मंगेशकर की फिल्मों का गीत संगीत और नृत्य पक्ष भी प्रभावशाली फिल्मांकन के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। 2004 में बनी युवा

0: से मन चाहे। हमारी वेबसाइट aakashwani.gov.in पर नया भारत आकाशवाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग।

विविध भारत के इसी कार्यक्रम का किसने और आज इसके साथ ही रहे हैं फनकार और मौसीकार जनजीत सिंह जी।

subdivision has 15

0: Maybe it is human. Human can be
1: beaten. आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात

और एकदम शिवपुर की तरह भारत इतनी देर से बोल रहे हैं ऐसा देश का दर्शन आपने ग्रहण किया ऐसी कौन सी ये कार्यक्रम अब मुझे सुनिए। श्रोताओं आज सिनेमा जगत के महानतम अभिनेता निर्माता निर्देशक और भारतीय सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की पुण्यतिथि है। उन्हें हमारा नमन। उनका जन्म पेशावर में हुआ था 14 दिसंबर 1924 को। उनके बतौर अभिनेता के रूप में मात्र एक क्रिकेट बॉय सहायक के रूप में की थी। राज कपूर को भारतीय सिनेमा का चार्ली चैप्लिन भी कहा जाता है क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्मों में ट्रैक घुमक्कर की एक खास छवि दिखाई देती थी और वर्ष 1988 में उन्हें

करके निर्माण निर्देशन में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर के बीच से बन गई। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है।

उसी फिल्म से इस तरफ में आप सुन रहे हैं मेरा नाम जो सिर्फ फिल्म के लिए ये है आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती टीम। हम आपको बता दें इस फिल्म के गीतों को लिखा था हर्षद भोजपुरी, नीरज और शैलेंद्र और संगीत दिया है पंकज भोजपुरी ने।

हम आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी राज कपूर, मनोज कुमार, सिमी जुबान, ऋषि कपूर, पद्मिनी, धर्मेंद्र, दाना सिंह, सेनिया, रयादीन सियानी और अचला सुखदेव ने।

जब आपने एक ही फिल्म सिटी कार्यक्रम में सुना जो कि 1970 में आई राज कपूर के निर्माण और निर्देशन में बनी फिल्म मेरा नाम जो करती थी। ये फिल्म भारतीय

ta vie, comme ça passe

सब्जी फल और सब्जियां खाएं, बाकी खाना अवॉइड करें। खाने के बजाय सलाद, फ्रूट्स और सब्जियों का ही सेवन अधिक करें, जिसमें कि पानी की मात्रा पहनावे की तरह तो गर्मियों में हल्के रंगे धीरे दूसरे कपड़े पहने, और अगर आपको सिर दर्द ठंडे के कपड़े जमें तो पानी पिए और डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और अब गर्मी से जुड़ी इन बातों के बाद

रूप कुमार राठौर, सीमा सर्वेश्वरी और सपना अवस्थी की आवाजों में गीतकार थे राहत इन

0: मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: माननीय प्रधानमंत्री

मुख्य रूप से वे तमिल सिनेमा में सक्रिय रहने के साथ साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित कई भाषाओं की फिल्मों में अद्भुत संगीत दोस्तों इलैया राजा को भारतीय लोक संगीत, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत और पश्चिम शास्त्रीय संगीत के उनके अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है, जिसने पीढ़ियों तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। और पता है, इलैया राजा दुनिया के सबसे अधिक गाने कंपोज करने वाले संगीतकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने करीब 5 दशक के करियर में 8,600 से अधिक गाने बनाए हैं और 1,500 से ज्यादा फिल्मों में बैकग्राउंड

deeper this shift takes place.

की फिल्मों में भी इलैयाराजा ने अपनी संगीत यात्रा को जारी रखा। और अब बढ़ते हैं उनके निकट सम्मान और पुरस्कारों की ओर। तो बता दें, इलैयाराजा

कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी फिल्में आज भी हमारे दिलों में भी फिल्मों में आम आदमी के दर्द को, उनकी खुशियों को, उनकी शिकायतों को बड़ी खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा। आवारा, श्री 420 और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि दूसरे देशों में भी हिंदी सिनेमा का परचम लहराया। दोस्तों, वे हमेशा कहते थे द शो मस्ट गो ऑन, यानी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। तभी तो 1948 में महज 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी आरती फिल्म की शुरुआत की और फिल्म आग बनाई। और उनकी मुख्य फिल्मों में बरसात, आवारा, बूट पॉलिश, जागते रहो और मेरा नाम जोकर शामिल है। और उनके द्वारा निर्देशित फिल्मों में बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्में हैं। और उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। इन्हीं बातों के साथ अब उन्हें याद करते हुए दोस्तों सुनते हैं उनका वो सदाबहार नगमा जो हमें जिंदगी की असल हकीकत सिखाता है।

साल 1983 में अनु पल्लवी से बतौर निर्देशक फिल्मों में कदम रखा। उन्हें अश्लील चित्रण नायकन से जिसमें कमल हसन की बेमिसाल अदाकारी और मणिरत्नम की लाजवाब डायरेक्शन ने फिल्म को और 100 बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में, जिसके बाद तो मणिरत्नम ने फिल्मों की परिभाषा ही बदल दी और उनकी फिल्मों की सबसे अच्छी फिल्मों की लाइटिंग और किरदारों की सादगी

का जोश, या फिर 2010 में आई फिल्म रावण हो, जिसमें अभिषेक बच्चन और मुख्य भूमिका निभाई थी, दर्शकों की पसंदीदा फिल्में बन गई। तो दोस्तों आइए सुनते हैं उनके द्वारा निर्देशित फिल्म रावण का गीत।

प्रोग्राम की आवाजों में गीतकार थे गुलजार और संगीत था ए आर रहमान का। और श्रोताओं ये थी कार्यक्रम के

की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की स्वर यादों की महफिल आप सुन रहे हैं जगत भारती से।

प्यार बकी बहन की आवाज में ये जाओ तो जिसको दम करते उनसे सुनो थे अनजान ने उसे लिखा और बकी बहन का संगीत बद ये गीत था। साथ ही आपको पता चल ही गया होगा कि यादों की महफिल में आज वो गीत जो यादों से जुड़े हैं जहाँ किसी को याद किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये भी याद दिला देते हैं 2 जून सखी सहेली के आरंभ में सखी भी खुशियों की रंगोली

0: सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के बीच।
2: बधाई हो बधाई
0: जन्मदिन की तुम्हें। गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विभागी के ऊपर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल। टीवी समेत स्वरूप बनते गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है आनंद बख्शी ने लिखा।

दिल ने कहा। इस फिल्म से गीता भी सुंदर से अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी ने लिखा निखिल विनय का संगीत। और साथ ही आपको एक और खास बात याद दिला दें

0: Ashura Dimitri, Himani Shivpuri.
1: Namaskar, main hu Himani Shivpuri. Aur main aapse mukhatib ho rahi hu Mrs. Bharti ki Sakhi Saheli karyakram ki bus start par 2 June ko.
0: Himani Shivpuri hongi hamari vishesh sakhi. 2 June Sakhi Saheli ki vashgarh par hum jalayenge स्मृतियों के बीच
2: बधाई हो बधाई
0: जन्मदिन की धूम गुब्बारे उड़ेंगे हिमालय जी के संग हिमालय जी साझा करेंगी अपने दिल की बात इससे जरूर सुनेगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे साथ ही आज की ये स्पेशल सखी सहेली को आप फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं तो जरूर जुड़े हमारे साथ 3 बजे

सुरीला सफर में मैं हूँ अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है और उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। और आपके प्यार भरे संदेश साथ ही गानों की लिस्ट भी मुझ तक पहुंच चुकी है, जैसे कि हमेशा पहुंचती है और बहुत अच्छे अच्छे गीत आपने सुनते लिखे लिस्ट में वो मैं पढ़ चुकी हूँ। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं वो भी अपने गीतों को सुनकर वहाँ लिख सकते हैं, उन शब्दों को लिख सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस प्रोग्राम की, चलिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए।

कुछ उठ सका है। गुलमोहर की डाल पर जब एक खाब उतरा, फूलों ने धीमे धीमे उसका नाम पुकारा। गुलाब की डाली में कोई राज छुपा था, चमेली की महक ने दिल का मौसम बता था। गेंदा भी बहारों संग आंगन में खिला, जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिल गया। एक पुरानी तस्वीर में खड़ा है किसी अनजही प्रेम का जो पहला सवेरा है। एक नर्म सा खत हवा के संग आया था, जिसने मौसम में तेरा जिक्र सजाया था। पूजा की पावन थी तेरी हंसी की रोशनी, जिससे भर जाती थी मन की हर वीरानी। पलकों की तिलमन में जब नजर गुजरती थी, सपनों की झालर भी धीरे धीरे कवरती थी। यादों का ये सिलसिला आज भी रंग भरता है, गुलमोहर गुलाब और ख्वाबों में रंग भरता है। चलिए आपके संदेश भी हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जहाँ पर रंग

पानी का व्यवस्था और उसके बाद उसका बैठने के लिए आती थी।

चाहिए अपने साथ हर दिन। एक और बात लिखते हैं कि वक्त की धूम से धुंधली नहीं होती वो यादें जो दिल के कागज पर मोहब्बत से लिखी जाती है। कोई कितना भी दूर चला जाए जमाने में गुलमोहर की छाँव में कुछ बात ही रह जाती है। बिल्कुल गुलमोहर का जिक्र हुआ है तो इसका गीत हम कैसे भूल सकते हैं। गीत तो फूलों पर है ही लेकिन साथ ही साथ एक सवाल, कितने सारे फूल हैं जो खुशियां बांटते हैं आपके चेहरे पर रंग ले आते हैं, तो आप अपने आप को कौन से फूल के साथ रिलेट कर पाते हैं, जुड़ाव महसूस कर पाते हैं मुझे लिखते थे, और कौन सा फूल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये बहुत जरूरी सवाल है कि क्यों अच्छा लगता है, मुझे जरूर लिखें। साथ ही साथ फूलों को सजाने के अलावा और किस तरह से आप यूज करते हैं, या फिर अगर आपके आसपास फूलों का बाजार है तो उसके बारे में भी मुझे जरूर लिखते हुए। फिलहाल राहत देने के लिए

सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में और गुलजार ने इसे लिखा दीवानों की तर्ज थी। जी हाँ, और आपके मैसेजेस मुझ पर पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि गुलाब की लाली और खुशबू की तारीफ सुनकर बाकी फूल जल उठे। मोगरा बोला, मेरी खुशबू के दीवाने हैं लोग। तो निशिगंधा ने कहा कि मैं भी क्या कम हूँ। गेंदे के फूल ने कहा कि मैं तो दिवाली की शोभा हूँ। मतलब एक ही चीज, हर एक चीज का अपना एक समय होता है, लेकिन सभी फूलों की जगह ईश्वर के चरणों में होती है। जी हाँ, क्या खूब कहा है आपने। एक और साथी कहते हैं कि आवाज की दुनिया विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के सभी उद्घोषक और सभी लोग जो भी यहाँ पर काम करते हैं उन सबकी आवाजें मीठी वाद्य यंत्रों से भी छूटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कल रात 2 बजे सूरत में आंधी तूफान के साथ पहली बारिश हुई और आज धूप के कारण गर्मी बहुत है। यही तो मौसम की बात है, मौसम पल पल में बदलता है। हमारे एक श्रोता है जो कि लंदन से इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं ऐप के थ्रू और उन्हें ये गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। देखते हैं आगे के नगमे आपकी लिस्ट से मैच खाते हैं या नहीं। हमारे एक और साथी है जो लिख रहे हैं कि 15 गीतों की लिखी हुई इबारत में से फूलों पर लिखे हुए मेरे दोनों गीत फेल हो गए हैं और अब देखते हैं और कौन सा मेल खाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल आपके दिल और हमारे दिल एकदम जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं गीत मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन मनोरंजन जरूर विविध भारती पर चलता रहेगा। हमारे साथी लिखते हैं कि रोज दोपहर 1 बजे प्रसारित होने वाला सुरीला

अनहोनी है बल्कि श्रोताओं के दिलों को जोड़ने वाला एक सुंदर ज्योति है। वर्षों से विविध भारती ने अपने श्रोताओं के साथ जो आत्मीय रिश्ता बनाया है उसे कार्यक्रम और भी मजबूत कर देता है और सोशल मीडिया के माध्यम से श्रोताओं की सहभागिता इस कार्यक्रम को और भी जीवंत बना देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और साथ ही लिखते हैं कि फूल बिना कुछ कहे प्रेम सम्मान शुभकामना और संवेदना व्यक्त कर देते हैं। मंदिरों की पूजा से लेकर विवाह स्वागत उत्सव और स्मृति समारोह तक हर जगह फूलों की जरूरत होती है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आप ये जरूर संदेश में लिखे कि आप किस तरह से इसके अलावा फूलों का उपयोग करते हैं या फिर सिर्फ सजाने पूजा घर से या विवाह स्थल को सजाने उसके अलावा ये जो फूल है जो मुरझा जाते हैं आप एक बार फूल लेकर आ जाते हैं किसी को गिफ्ट कर देते हैं या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया उसके बाद इन फूलों का आप क्या करते हैं किस तरह से उसे उपयोग में लेकर आते हैं साझा करते हैं अपने विचार और सुनते हैं कि सब लोग किस तरह से इसे यूज करते हैं। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई एक फूल की बात करना कठिन है इनका जो रंग होता है मनमोहक सुगंध होती है कोमलता होती है

किसी को गिफ्ट कर देते हैं, किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, उसके बाद उन फूलों का आप क्या करते हैं, किस तरह से उसे उपयोग में लेकर आते हैं, साझा करते हैं अपने विचार और सुनते हैं कि सब लोग किस तरह से इसे यूज करते हैं। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई एक फूल की बात करना कठिन है, इनका जो रंग होता है, मनमोहक सुगंध होती है, कोमलता होती है, वो हमारे मन को सकारात्मकता से भर देती है। जी हाँ, बिल्कुल,

गीत अभी आप सुन रहे थे और लता मंगेशकर जी ने करी मुकेश की आवाजों में। अभिनेता अभिनेत्री आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, स्वरूप संपत और राज किरण पर सुनाए गी। फूलों की बात की कि फूलों को देने के लिए गिफ्ट देने के अलावा और क्या करते हैं, तो हमारी साथी लिखते हैं कि जब भी उन्हें कोई फूल गिफ्ट करता है देता है तो वो अपनी किताबों में छुपा कर रख देती है। फिर सोचती है कि इस बार जब भी कोई देगा तो उसे अपने बगीचे में लगा देंगे। हमारे साथी लिखते हैं कि गुलाब के फूलों की हमारे देश में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी हमारे अजमेर जिले के पुष्कर में होती है जो कि एक तीर्थ स्थल भी है, और फूलों का उपयोग यहाँ पूजा के साथ साथ गुलाब का इत्र और गुलाब का गुलकंद बनाने में भी किया जाता है। हमारे घर के गार्डन में भी गुलाब के पौधे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है ये और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आपने बताई है, हमें ये नहीं पता। हमारे पर साथी लिखते हैं कि सबसे अच्छा फूल तो गोभी का फूल होता है, जब कोई इंटरेस्ट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसकी कभी बना ली जाए। जी हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पारिजात, हरसिंगार, शिवपालिका या प्राजक्ता, ये एक ऐसा फूल है जो बहुत ही सुगंधित होता है और बड़ा पवित्र पुष्प माना जाता है, और आयुर्वेद में भी इसके काफी सारे औषधीय गुण हैं और धार्मिक और पौराणिक महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने काफी डिटेल में इसके बारे में बताया है और महाभारत काल में भी उस वक्त की भी कोई चर्चा की है, वहाँ पर उसका कुछ बताया है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम और मैसेजेस पर जाते हैं। हमारी एक श्रोता कहती है कि वो नागपुर में रहते हैं और नवरात्रि गणेश जी के आगमन के समय हर त्योहार को फूलों की मंडी में जाकर हर प्रकार के फूल खरीद कर लाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि पारिजात पुष्प को देवलोक का पुष्प माना जाता है, और हमारे श्रोता लिखते हैं बहुत ही प्यारी लाइन कि फूलों से मिट हंसना सीखो, घबरों से मिट जाना, ये कविता की लाइन है जो बचपन में याद की थी और आज भी याद है, और सभी फूल बहुत सुंदर लगते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनके आसपास फूलों का बाजार तो नहीं है, लेकिन वो एक सरकारी शिक्षक है और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बागवानी भी सिखाते हैं, जिसमें फूलों के बारे में बताते हैं और हर दिन माँ सरस्वती की तस्वीर को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रार्थना करके अपना काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप। हमारे श्रोता कहते हैं कि लिटिल मिस रेड एक अद्भुत फूल है, इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ फूलों में गिना जाता है और ये माना जाता है कि केवल दो ज्ञात पौधे ही बचे हैं, और एक इंग्लैंड में है और दूसरा न्यूजीलैंड में है, और दिलचस्प बात ये है कि ये रेड कलर नाम जरूर ऐसा रेड जरूर नाम है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो गहरे गुलाबी रंग के होते हैं, और साथ ही ये हमें ये सिखाता है कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज वही है जो कम दिखाई देती है लेकिन जिसकी मौजूदगी पूरी प्रकृति को खास बना देती है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हम तक पहुँचाया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आंगन में महकती मधुमालती उन्हें बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह और तमाम उदासियों को दूर कर देती है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये शो सुनकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल बागों में नहीं यहाँ पर कहीं झड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे से।

चेंज करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा तरोताज़ा रहता है, वो सिर्फ रह सकते हैं और उसके बाद फिर उसको बाकी दाना नहीं यूज कर सकते। हमारी एक जाति लिखती है कि पुणे की वादी में वो इधर गई है जब गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ का टूर किया था और वहाँ को फूल पत्ती बोलकर एक जगह आई थी फूलों की और बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे। मोबाइल तब नहीं होते थे इसलिए फोटो नहीं खींच पाई वो। जी हाँ, उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन का जिक्र आया है हॉलैंड का। यहाँ पर एक साथी ने लिखा है हमारी साथी लिखते हैं कि ऐसे ऐसे फूल भी मिलते हैं जिनके बारे में अगर आप सुने तो ताजुब करेंगे। कैक्टस के भी फूल खिलते हैं और ये फूल साल में एक बार रात को 12 बजे के करीब खिलते हैं 1.5-2 घंटे के लिए। और उस पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता भी है कि कैक्टस के फूल तुम दिन में खिले होते। जी हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है और आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। सच में ताजुब है। इसके अलावा गुलाब के फूल केवल सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, साथ ही साथ इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, विटामिन सी भी मौजूद होता है, उसका टोनर भी बनाया जा सकता है और होंठ भी गुलाबी होते हैं उसे पीस कर लगाने से, साथ ही उसकी चाय भी बना सकते हैं, ऐसा हमारे साथी ने लिखा है। उसके अलावा गुलाब जल के रूप में भी प्रयोग होता है और भी बहुत सारे फूल हैं जिनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। काफी अच्छे से मेटेरियल पहुंचे। चलिए हम

गीत अभ्यास में बैठे जैसे हम पूरा नहीं सुना पाए क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आपके मैसेजेस मुझ तक खूनों से पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं कि कईयों ने यहाँ पर प्रश्न लिखे हैं हिमानी जी के लिए, लेकिन आप फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर सभी सहेली के लिए पोस्ट के नीचे आप जरूर अपने प्रश्न रखें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। आज का सभी सफर यही समाप्त होता है, इजाजत दीजिए। आपने आज अपने यहाँ से सफर कर दिया।

दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह है। समय का पहिया घूमता है तो कभी सुख आता है तो कभी दुख। सुख का समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन दुख का समय बेहद लंबा और कष्ट भरा मालूम होता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। इसमें घबराने की बजाय जीवन में सुख का एक बहुत बड़ा लाभ है। यह हमें अपने व्यक्तित्व में अंदर झांकने और उसे मजबूत करने का मौका देता है। दुख हमें अपने सच्चे और झूठे रिश्ते नातों और दोस्तों के असली चेहरे हमारे काम

कोई संकट आता है और अधिकांश लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब अपनी सहायता ईश्वर के अलावा हम स्वयं करते हैं। हमारा दृढ़ निश्चय और हमारी सकारात्मकता हमें जीवन के तूफानों में भी भटकने नहीं देती। अंधेरी सुरंग कितनी भी लंबी हो, उसके अंत में प्रकाश की किरण मिलती ही है। रात कितनी ही काली क्यों न हो, जीवन में सुख की सुबह होती ही है।

का समय हमारे जीवन में इस चुनौती की तरह आता है। इस चुनौती को हम अपने संयम, धैर्य और विवेक से बड़ी सहजता से परास्त कर सकते हैं। और जब हम अपनी कर्मठता से, अपने पुरुषार्थ से परिस्थितियों पर विजय पा लेते हैं, तब हमें अपने आप पर गर्व भी होता है और उस पल को हम उत्सव से कम नहीं समझते।

दोस्तों, हम जीवन को जितनी सहजता से लेंगे उतना ही हमारा मन शांत रहेगा और हम अपने धैर्य और विवेक से दुखद परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

मुझे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मासेकिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार निवेश

उस प्रकार की राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी की मुद्दा वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने कहा भी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और

अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा है।

confundes. Y tú me entiendes que te dices que te lo voy a hacer.

के खोलने के बाद चीन ने ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इसराइली हमले पूरी तरह बंद होने पर अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमरीका और ईरान के बीच

0: में आप एक कौन सा नीचे आ जाए इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अवसर हुआ
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरी की धड़कन दो जून छठी पहली के आरंभ में सजी हुई खुशियों की रंगोली जैसे की झलक यादों की महक बातों में भूलेगी अपने प्रतिरोली

que la gente decía que dice. Yo sé que goodbye o rengue, que mami dice sen. Que mami dice algo que rengue, hazme del que va. Se verá un que llega, yo y un, dice que es que te está ready, de mi fin de rey. यहाँ जरूर जुड़िए हमारे साथ आज सखी सहेली स्पेशल यानी कि आज हमारी वर्षगांठ पर मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी से मेरी सखी ममता सिंह की दिलचस्प बातचीत आप सुनिए। हिमानी जी हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी है, हमारे परिसर में पहुंच चुकी है। 3 बजे से वो फेसबुक लाइव भी होंगी और आप तो उनसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज की सखी सहेली की पोस्ट के नीचे, हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। और ये दिलचस्प बातचीत बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक लाइव भी हम आपको सुनाएंगे।

0: तरह सचमुच की आवाजों में गीत कभी आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से शकील बदायूं ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। दो धुएं सखी सलून के अंदर में सजे हुए खुशियों की रंगोली हसी की खनक यादों की महक बातों में भुले हुए अपनीता की रोली दो धुएं विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं

किसियों के बीच जिसम के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल के बाद जरूर सुनेगा दो जोन विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। प्रिया साथियों आज 3 बजे स्पेशल सखी सहेली की हाँ आपके सहेते कार्यक्रम सखी सहेली की वर्षगांठ पर आज मशहूर अभिनेत्री हिमानी शेखपुरी भी हमारे विविधाषी परिसर में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत स्वागत उनका और आज ये दिलचस्प बात की हिमानी शेखपुरी जी के साथ रेडियो सखी ममता सिंह जी आप सुनेंगे। साथ ही आपके जो प्रश्न है वो आप हमारे फेसबुक पेज पर सखी सहेली के पोस्ट के नीचे लिख सकते हैं, हम उन्हें जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप बने हमारे साथ और 3 बजे ये विशेष कार्यक्रम जरूर सुनिए। ये फेसबुक लाइव भी हो

उसकी फाइल इस क्रम से आप मूवी को सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में मशहूर सुल्तानपुरी ने लिखा था। ओपी नैयर का संगीत था। आप सुन रहे हैं सदाबहार लग में सदभाषी।

ये भी सदाबहार नजर प्रोग्राम का आखिरी गाना और थोड़ी ही देर में हमारा सजीव प्रसारण सखी सहेली कार्यक्रम होगा और हमारी जानी मानी अदाकारा जानी मानी अभिनेत्री हिमानी सुपुरी जी विविध भारती के स्टूडियो में आ चुकी हैं। बस दिल भांग के बैठे रहिए, तो 4 मिनट बाद हम शुरू करेंगे।

Thank you.

किसान हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मुझे साल भर में 2-2 हजार रुपया करके शुरुआत से ही मिलते हैं और इस पैसे से हम किसान और कृषि कार्य के लिए खाद बीज व अन्य उपकरण का खर्च करते हैं और इससे हम सभी को लाभ भी मिला है।

बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती।

0: फिल्म और टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी को सजीव प्रसारण में आमंत्रित किया है। हिमानी जी अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म, धारावाहिक और रंगमंच तीनों माध्यमों में हिमानी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम हिमानी शिवपुरी जी का स्वागत कर रहे हैं। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सजीव प्रसारण स्टूडियो में। नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, थैंक यू, आपने इतना प्यारा स्वागत किया और आपको और पूरे विविध भारती के परिवार को सभी सहेली की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
0: हिमानी जी, ये विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं, इसके पहले भी आप आ चुके हैं और आज सखी सहेली की वर्षगांठ पर हमें आमंत्रित किया है। तो ये स्टूडियो में आना कैसा लग रहा है और साथ में ये बताइए हमें कि रेडियो से आपका कैसा नाता है, खासतौर से विविध भारती से?
1: देखिए, वैसे तो मैंने फिल्म टेलीविजन थिएटर में काम किया है, लेकिन सब माध्यमों का जो पहला माध्यम जिससे मेरा परिचय हुआ या

0: सबसे पहला मतलब बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से पुरानी, हम लोग पापा हमारे घर में दूरदर्शन नहीं आया था तो रेडियो पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकी नंदन पांडे जी की आवाज अभी तक गाने में कुंदन लाल सहगल एक शौक होते थे कि पुराने फिल्मी गाने जैसे कुंदन लाल सहगल भूले बिखरे आज भी प्रसारित होता है हाँ, और वो सुनते थे और भी मजा आता था। बिना सा दीपमाला कैसे पता लगता था कौन गाना इतना पॉपुलर है। और सबसे बड़ी बात हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी क्योंकि वो लोग देखते थे तो क्रिकेट के एंथुसियास्ट थे तो मैं आज तो खैर आईपीएल वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था वो टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूँ लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में है क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिन्न अंग था। और बचपन क्या आजकल जब बहुत सारे चैनल्स हैं लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है कि हम लोग जब मुंबई में आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या करते हैं कि रेडियो के साथ में रहता ही आप गाने बजते रहते हैं तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही बचा बात है।
1: बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है तो हमें भी याद है कि चंदन के मुंडेर पर एक रेडियो और गांव के कई लोग यहाँ तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला के यहाँ रेडियो है चलो हम क्रिकेट तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है। बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के छक्के लगाए या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ लिया आपने
0: नहीं क्रिकेट में मैं तो ज्यादातर किताबी कीड़ा थी बचपन में और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी। क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था पर चूंकि उस घर में ऐसा माहौल था और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो सनातन था हमारे टाइम पर सुनील गावस्कर वगैरह तो

और ढेर सारी यादें संभालेंगे। तो एक गाना बधाई देने वाला गाना है,

0: बधाई संदेश के बाद से आई हुई है और हमारे बहुत सारे श्रोता आपके लिए लिख रहे हैं कि हिमानी जी आई है भारती के स्टूडियो में और आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि रेडियो से इतना पुराना नाता है, ऐसा लग रहा है कि मायके जो बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, लगता है कि अपने मायके आ गई।
0: सही बात है।
1: और ऐसा भी नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुकी हूँ और दिल्ली और दिल्ली में भी चले, देहरादून में भी जब भी जाती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे
0: बड़ा गहरा है,
1: बहुत गहरा है
0: और आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिखते हैं कि आपके अभिनय के कारण है। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमानी जी अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जाने जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपसे हैं कौन देखी, उससे आपको देखा और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं और इन्होंने सवाल भी किया हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज क्या है। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चल जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है जैसे कि सहेली बहनों का त्यौहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है और हमारी सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली है सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, कभी तो कहलाती होने की नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सखी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी है हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई है तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं कि देहरादून से आपने दिल्ली का सफर कैसे तय किया और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुखड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोटी लगाइए और साझा कीजिए कुछ आगे।
1: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है कि जहाँ 2-3 दिन गर्मी होती है तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्रेजेंट वेदर है कि ही। और हम लोग जब गर्मियाँ होती थी तो स्विमिंग पूल में ही पड़े रहते थे और पापा पहाड़ी थे तो हमको देहरादून वैली में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो लक्ष्मण झूला तो श्री कृष्ण है, लक्ष्मण सिद्ध होता था और सॉन्ग रिवर होती थी तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे। पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग पूल में भी था क्योंकि पापा दून स्कूल में पढ़ाते थे तो वहाँ स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी मतलब प्रकृति से
0: जुड़ाव
1: बहुत जुड़ाव था। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है तो बहुत चक्कर आते हैं, तो हम लोग प्रेफर करते थे और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे, मसूरी पहुँचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी। और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक टोल आता था, टोल टैक्स होता है, वहाँ की पकौड़ियाँ बड़ी प्रसन्न है, पहाड़ी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे। और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग जंगल पैदल चलते थे। और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर थे हम, अपने को सोचते थे हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर हैं,
0: मेरे ही शैतान थे, बहुत सीधी सारी लग रही है,
1: बहुत शैतान थे, मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे।

और क्या करते थे और बच्चों को छत से जैसे पेड़ों में जून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहाँ पर, क्योंकि इस बार वो FRI का भी पार्ट होता था फॉरेस्ट रिसर्जेंस, इतने खूबसूरत पेड़ हैं। तो हम लोग पेड़ों में चले जाते थे बंदरों की तरह, मतलब मुझे मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे मोबाइल फोन पे मोबाइल

0: जीने पे फ्रूट दिखते हैं या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाए, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची आम जामुन अमरूद खाए हुए हैं, उसका मजा ही कुछ और था।
1: बिल्कुल, तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो खास तौर से नहीं सीखी, कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकले तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास बेबाकी से जीती थी, तो हमारी बहुत सारी शक्तियाँ गाँव में रहती हैं, कस्बों में रहते हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना आपके लिए। हाँ, अपने माता पिता को समझाना, तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
0: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि अब थिएटर वो, और आजकल तो इतने सारे लोगों के साधन है, साधन भी है और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग है, आप ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था। तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस, और साइंस का ही आईएससी में वन ऑफ द टॉपर्स थी, मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, लेकिन रंगमंच करती थी तो जो मज़ा रंगमंच में आता था ना वो साइंस का बड़ा ड्राइव था, एमएससी का मतलब 9 से 5 बजे से शाम को अगर रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मजा आता था, लेकिन

थे ड्रोन स्कूल में, तो मिसेस मार्टिन मुझसे कहती थी मानी यू कैन गो इन टू फिल्म. तो मैंने कहा नहीं, हमारे नॉर्थ में एक बड़ा वैसा ही है फिल्म बिल्कुल नहीं. मैं 50-55 साल पहले की बात कर रही थी. हाँ, नहीं सोच ही नहीं सकते थे. तो खैर मैं आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी और मैं MSc कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं ब्रेक का, थ्री पेनी ऑपेरा. इतने में MSc राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ नाटक आए, कुछ संग्रह पता चला कि MSc की संस्था है हिंदुस्तान में. उसमें मैंने भी थी, अब तो मैं काफ़ी सारे स्कूल खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, चेन्नई कटा पुणे में है और लखनऊ में भी अब खुल गया भारतेंदु नाट्य अकादमी. तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसा पता चला. ऐसी जगह जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती, तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली. तो मैंने तय किया मैं यहाँ जाना चाहती हूँ. इस दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे MS अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली. तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई थी, साथ में किसी से MSc का भी इंटरव्यू दिया. घर में और जब लेटर आया MSc का सिलेक्शन का, तो मैंने घर में बम खोल दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ MSc करूँगी. MSc मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है. अब मुझे तो खैर मैं सब दिला दी थी, पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्ले करती थी. और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी उस टाइम, बहुत बड़ी बात थी अमेरिका पढ़ने जा रही है, लड़की को स्कॉलरशिप मिली है. तो सब किसी की भंजी, भंजी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का, भंजी की नौनी है, बहुत होशियार है. अब जैसे लोगों को पता चला बड़जी की नौकरी की, तो वहाँ जाकर सब ने कह रहे हैं बड़जी की नौकरी की पागल हो गए. समझाओ मेरे पापा के पास आए कि बड़जी आप समझाओ इस सब लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा अच्छा करियर को स्कॉलरशिप मिली है और मेरे सारे रिश्ते.

0: देंगे
1: सब बोले क्या तुम वतन की करेगी मांड ये तो मांड के देते
0: हैं।
1: तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन मेरे पापा काफी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हजरत भट्ट सैदेश वो वहाँ के जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तो अमेरिका हुआ हो अगर तुम में वो रहा मतलब बाद में आके कर लेना शौक है ना तुम्हारा। तो मेरे पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती थी मेरे से कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी पापा मेरे पास बहुत पैसा रहेगा लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ, मेरे पापा खुद मुझे LSD लेकर गए वहाँ मेरा एडमिशन कराया और वहाँ से मेरा करियर चेंज हो गया। 3 साल की ट्रेनिंग फिर वहाँ डेप्यूटी ज्वाइन करके डेप्यूटी इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती हूँ अपने पैरों पे खुददारी। 250 की स्कॉलरशिप से मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगा हूँ, 250 की स्कॉलरशिप मिलती थी उसके बाद मैंने डेप्यूटी ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी।

संस्कृति से है और हमारे सामने हमारे विशेष सचिव विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी है और बातें इतनी दिलचस्प हो रही है कि गाने की बारी नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की पहली ये गाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा है कि हम आपके हैं कौन। हिमानी

क्योंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही है और हिमानी लोगों के अन्य संस्कृत चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक कोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन खुले एरिया में थी जहाँ की खुली खिड़की से सताने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देख कर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती ये अजीब पागलपन है, तुमको रेडियो सुनने का पर आज 20 साल हो गए, मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आएंगे उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवन के अभिनय करती है और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहे। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम भी बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें की साझा की, अपने बचपन की साझा की, हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गांव है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गांव है, भटवाड़ी वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो इसके विकास के लिए उस गाँव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना क्या है कहानी। मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी जिसने अपने गांव से निकली, जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी जी। लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ जी। तो ये मैं क्या जब एमएससी में पढ़ती भी थी स्टूडेंट थी तभी भी जब छुट्टियाँ होती थी तो मैं आती थी और मैं जो वहाँ के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे आए थे उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी और आके नाटक भी करती थी देहरादून सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी, मैं हमेशा कुछ काम करती रहती थी और मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपनी क्षेत्र के लिए कुछ करूँ। अभी फिलहाल जब मैं आई 3-4 साल पहले एक कॉन्क्लेव हुआ था जो

उनको कहते हैं जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं। तो हमारे उत्तराखंड जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं, निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर, क्या करें। और उनको लोगों का ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन है। अभी भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी, और सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे। और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई जो मेरे गोद जिला, तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं 30-35 बूढ़ी महिलाएं और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में।

0: आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में। तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियाँ होती थी, खेत खाली पड़े हुए हैं, कोई है नहीं खेती करने के लिए, और वो है तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए गाँव के लिए। तो मेरे एक सपना है, बहुत जाइलेंटिक
1: बहुत ही ये बड़ा सपना देखा है। यहाँ पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत

0: 0 1004 Alpha B Ujwaibha Vishnaki Shandar Urshi.
1: तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम है। तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे बोलते हैं गाँव में कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून को 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून पहाड़ी रास्ता, सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो जानकारी में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है वेब सीरीज जिसमें कि चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, क्योंकि तो मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा दुख हुआ होगा आपको। और जान मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े, और मुझे बचपन की यादें में मालते बहुत हुआ करते थे, अब एक सीजन चेंज भी होना है, ग्लोबल वार्मिंग से और आम जो आम लग रहा है बताओ पहाड़ों में, आम लगते ही नहीं थे कभी पहाड़ में, आम लग रहे हैं, मालते गायब हो गए और श्रोते ज्यादातर हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं। तो और बंदर का झालू का ये सबका मेहनत है, वो सब ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं, दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं सब खा जाते हैं, खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या वो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहाँ पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई। तो मैंने ये मुहाया गांव के लोगों को दिलवाए हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई। और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि वो बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आस पास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है। तो धीरे धीरे, और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं कुछ अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गाँव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बच जाए, वहाँ पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा मैंने बात की है सरकार से, वहाँ पे एक स्कूल है सरकारी स्कूल जिसमें मेरे पापा भी कभी पढ़ते थे, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहाँ नहीं पढ़ते, क्योंकि वहाँ वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है,

0: सोचना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूं, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें बच्ची पढ़ाए बुनाए और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले। और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है, पहाड़ों में कुछ औरतें काम कर रही है, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके। तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है और ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है और हम विभागीय परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें ताकि इतनी सारी लड़कियां खासतौर से जुड़ पाएं। और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है,
1: बहुत कठिन है, सारा काम लड़कियां और औरतें कर रही हैं, घास काटने से लेके जानवर चुगाने से लेके सब कुछ।
0: हमने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में। और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं, तो अकेले फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं।
1: बिल्कुल
0: सलाम तो हम आपको भी कर रहे हैं।
1: पहाड़ियों पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे बहुगुणा जी ने या चंदी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन, महिलाओं ने उसका आगे बढ़कर सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं चिपकी थी।
0: क्या बात है सचमुच। तो हम इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे अभी इस प्रोग्राम के बाद, 4 बजे जब हमारा प्रोग्राम सभी प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में, और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हमारी शिवपुरी रखेंगे। तो ये हम सबके लिए गौरव की बात होगी,
1: ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है और धन्यवाद। और पेड़ लगाना ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये एनवायरनमेंट इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, जरूर हम टैक्स ले रहे हैं लेकिन हमारा भी कर्तव्य मुझे निजी स्तर पर, हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
0: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं जामुन के, बस वही हम
1: खा रहे वो भी कट चुके हैं।
0: तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवार से बातें हैं।
1: जी सर,
0: बस इस पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए। वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देखते रहेंगे,

0: विक्रम और हिमानी जी की अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको
1: जी जी।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए। तो हमारी श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए ये तो बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी है, तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी, क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक एक भी होता है मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं। क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है, लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसमें कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई, क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना, तो एनएसबी रिपेटरी वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वही होता था 9 to 5, और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस, अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते थे, अगर पैसा नहीं होता तो जमुना पार रहते थे मयूर विहार में, आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़े पॉश कॉलोनी बन गई है, उस टाइम वो थी स्ट्रगलर थी। तो हम मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी, और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे, जैसे बैठे रहते, अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात बड़ी कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ, तो लोग बोलते थे नहीं वो तो ठीक है, जैसे बैठे क्या करते हैं, औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि कैरेक्टर आर्टिस्ट ना, हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे, पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं एनएसबी से प्रेस निकली थी, तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पोट डाला था, मुझे तो नहीं पता था, पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे, तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पोट डालो, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी, तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है, और वो किस तरह से आके खूब मेहनत से तैयार किया, वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार शांति मिली थी। तो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। रज्जो बुआ बहुत मेहनत, हीरो नंबर वन की बुआ, और परदेश की बुआ, और बंधन, बहुत सारे किरदार,
0: उमराव जान में भी आपने काम
1: किया, उमराव जान में भी काम किया, और ये मेरा जो धारावाहिक आपने सब बोला, वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था
0: जी का
1: सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का भी जो था, और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल हप्पू की उलटन पलटन,
0: जी जी जी,
1: वो बहुत किरदार, कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक सराहा है, पसंद किया, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए हैं, वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करने, और एक तरह के रोल होते थे, लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ, या बीवी नंबर वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का क्या, आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का तो इस मामले में मैं क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है, मैंने नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है।
0: और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
1: सूरज के सातवां घोड़ा मम्मो
0: मम्मो कला फिल्म है, उसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहाँ एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं?
1: ये किरदार की बात है, ये तो किरदार की बात है। ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवन करते हैं। और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है, थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है। और हम बड़ी मतलब थिएटर ही है, जिंदगी तो आप देखिए सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं, ये तो जिंदगी सिखाती है।
0: जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियाँ भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप इसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं, हमारे श्रोता की टिप्पणी है।
1: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज्यादा बड़ी है, वो सबसे ज्यादा बड़ी चीज है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना।
1: जी
0: एक

0: समय हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो बड़ी तैयारी किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आए?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस नहीं जितनी लगती है। ग्लैमर है जरूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत और टाइमिंग घंटे बहुत ज़्यादा भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पर पहुँच कर दीपिका पादुकोण 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको काम

0: प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स है, अभिनय कर सकती हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर, इतनी सारी विधाएं हैं। तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो जरूर आइए जी। लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा, शाहरुख खान से खान होना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल,
0: आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अगर आप में टैलेंट है और सिंसियरिटी है और आप मेहनत करने के लिए तैयार है, आपको कोई आउटसाइडर से आए तस्वीर हुए

0: बनती, भाभी बनती है, चाची बनती है, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह से संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियाँ झेलनी पड़ी।
1: एक महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें आगे है,
0: बताए
1: आप, हाँ, चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूव करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्टी, मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत है तो इसलिए आपको अच्छा मार्क्स।

0: तैयारी कर रहे हैं, हमको डबली प्रूफ करना चाहिए, करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला की अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है। तो एक ये सब दो
1: जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। बिल्कुल। और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बताओ हिमानी सुपुरी?
0: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है।
1: बिल्कुल। और अपनी शक्ति को तलाशे और आपकी इस
0: शक्ति है और किसी भी चीज का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है
1: जी। अब गाना सुनाए
0: जरूर।
1: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल
0: जी।

0: के शामिल तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो मिले जुले कमेंट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपके साथ ही मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं, विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए, एक श्रोता ने लिखा है कि तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी हिमानी मामी रखा है, तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। जिन्हें कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं,
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है। मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने किया था, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगी।
1: जरूर जरूर आऊंगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज की फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रीकर,

बहुत सारी चर्चा चल रही है जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती है। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष यादव की प्रेरणा और सहयोग से ये प्रसारण सफल हुआ और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान दयाडे जी और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारी विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियां है इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को आप

0: स्कूल का विविध भारती है जिसम के 1.8 मेगाहर्ट्ज अब मेरे प्रशासन के लिए करते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रशासन के
1: बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। दिल्ली में जब तक आप रहे थे कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया से, ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग भी की, चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर के नाम ले लीजिए, चाहे आप दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का, जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमर शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे इनके बैलेट में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना, और जब बैलेट में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास बीवी स्टेज का 30 स्टेज का नोटेशन आता था बैलेट का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में कोई जैसा तो चैलेंजिंग था
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहाँ पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं, आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, वहाँ हमने कितनी रिकॉर्डिंग की वहाँ पे
2: वाह वाह।
1: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी रोजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी और जसपाल मुनि जी, हरिओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी और बहुत गुणी म्यूजिकर मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत रहूजा जी भी, पूरा भारत पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के
2: जी,
1: और जवाहर भट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो पिताजी का भी अपना एक अलग दर्जा रहा है दिल्ली में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था, आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर सर हैं, बट एक आर्टिस्ट का इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की उनके प्रेम की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, ये बहुत बड़े सम्मान की बात है।
2: वाह।
1: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
2: अच्छा।
1: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचाजी को देख के, मेरे चाचाजी श्री दिनेश कुमार जी, वो भी बाद से बात अच्छे हैं और म्यूजिक डायरेक्टर एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए
2: जी।
1: तो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में, डिवोशनल म्यूजिक में और कुछ कुछ गज़ल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये तरीके का रहा
2: सफर, ये सफर हमारी बातचीत के सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं,
1: जरूर
2: आपकी पसंद का कौन सा गाना सुझा रहे हैं,
1: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
2: देखिए आपकी का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूँ और वो है तुम्हें देखती हूँ तो लगता है, या आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे
1: जी,
2: है ना
1: जी, जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूँ ना
2: जी,
1: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई गई है
2: यादव जी के साथ।
1: वाह। और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर याद करूँ।
2: वाह,
1: आप देख रहे होंगे इसका ये निशान
2: जी जी जी,
1: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
2: हाँ हाँ हाँ, उंगलियों के
1: ये बहुत पुरानी बात हो गई।
2: वाह।
1: और ये जो ट्रेडिंग है ये वैकुंठ रेणु की ट्रेडिंग है, तो वैकुंठ वेणु जो है लॉकडाउन के समय पे पिताजी मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को अपने बुजुर्गों को अपने बारह गुरु को और अपने संगीत को अपने साथ को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने जिसके नाम से चैनल रिलीज किए वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं
2: बिल्कुल,
1: जहाँ से ना वापस आने का मन होता है ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है तो फिर आप वापस नहीं आते वहाँ से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है जो इमोशन है वो एक जुड़ाव है संगीत और सुर के और साथ के साथ
2: जी,
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना मुझे।
2: क्या बात,
1: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
2: वेणु
1: और वेणु क्योंकि मांत्रिक को वेणु भी बोलते हैं
2: जी,
1: तो इसे वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था

0: हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जिरोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, और श्रेया घोषाल जी से लेके सविन सलेमान जी से लेके विशाल शेखर जी से लेके सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया।
1: वाह।
0: और इस बात की इनिशिएटिव की तारीफ की और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था, उन हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और चरण वादक हैं, कोशिश करूँ कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल,
0: जब आप घर पर पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें, अब उसमें पंडित प्रवीण गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कदम ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
1: जी,
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
1: जी जी
0: और फिर और भी काफ़ी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफ़ी गुरुप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफ़ी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें, उन्होंने राग मालकोट बजाया था
1: जी,
0: फिर भाई ने राग हंसबनी बजाया था और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाया। तो ये हमारा वैकुंठ देवी का बनाया हुआ मानसिक है।
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इसी वीडियो से सुना रहा हूँ
1: जी। क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: तो मैं आपको सुनाऊंगा
1: जरूर,
0: उनके बारे में भी बताऊँगा।

0: बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं

0: कुछ साल हो गए काम करते हुए
1: जी
0: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव देकर पिताजी के पास जाते थे, दिल्ली के जो नाम से काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा सूटेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित रखा है, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे, उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पर। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले, वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते। तो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप जरूर दीजिए। वहाँ से फिर खड़ी बनी मुंबई की आने की।
1: अच्छा हाँ, तो इस तरह से
0: मुंबई आना हुआ
1: जसपाल मोनी।
0: हाँ, तो इतना आसान जिस तरीके से बता रहे इतना आसान था नहीं, बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ वो तो भी नहीं बता सकता। बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड, बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
1: जी
0: कोशिश नहीं कर रही।
1: बिल्कुल, एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
0: बिल्कुल,
1: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा होती है और इस यात्रा के विस्तार पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें, आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
0: वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है
1: जी,
0: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
1: जी जी
0: और क्रिस्टी हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
1: ओ माय गॉड के बाद कोई भी तो बहुत लोकप्रिय हो
0: जी जी जी
1: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के
0: जी जी जी
1: जी।
0: और ऊंचा ये पिक्चर आई थी
1: ऊंचाई जी राष्ट्रीय प्रोडक्शन की अमिताभ बच्चन थे,
0: एक मिनी पिक्चर आई थी
1: जी
0: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है, अन्ना भाई एमबीबीएस ट्विटर है,
1: क्या बात है,
0: दबंग थ्री है, दृश्यम है,
1: ये तो बहुत लंबी सीरीज है,
0: रणजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुड बाय है, मनमंजिया है,
1: वाह वाह,
0: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
1: हाँ दोनों पार्ट,
0: हाँ दम लगा के हिस्सा, जॉली एल एल बी,
1: वाह वाह,
0: बहुत सारी पिक्चर है
1: जी, अभी
0: बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है,
1: हाँ,
0: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है
1: जी जी बिल्कुल,
0: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।

0: संगीत को ज्यादा करता हूँ और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूँ, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं इंजॉय करता हूँ। बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसमें उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
1: वो फटाफट से
0: नहीं चलती, हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेकर आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
1: बिल्कुल।
0: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। आपका क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
1: बहुत एक्सपेरिमेंट
0: है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी,
1: जी बिल्कुल,
0: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा फिल्म,
1: जी जी,
0: तो वो जो लोकप्रियता है लोगों तक घर घर तक पहुँचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक से ज्यादा है।
1: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, सभी गानों के ट्यून गाते हैं बजाय। और दिलचस्प बात ये है कि हम एक भारतीय में बैठे हैं जहाँ से जब भी बीच में फिल्म होते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर बल्कि मैं तो

0: अच्छा लगा कि जानते थे मेरी बांसुरी में मेरा बजाया हुआ संगीत आपके जैसे बांसुरी में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है, तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है?
0: पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो
1: एक हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
0: वो एक वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें वो फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है।
1: वाह।
0: और फिर एक जिसमें मनोरी दा जो हमारे इंडस्ट्री में
1: बड़ी फ्लूट बजाय कर
0: मैट्रिक फ्लूटो हो, नहीं ये मैट्रिक फ्लूट है सर
1: जी बिल्कुल,
0: जैसे सिल्वर प्लेटेड।
1: वाह
0: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज सिल्वर हेड है, इसका चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है
1: जी जी।
0: तो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम दम
1: डिफरेंट है बिल्कुल।
0: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री
1: ये भी बजाना होता
0: है, अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ। सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं।

0: खास बात ये मैं सिक्किम से लेके आया।
1: अच्छा,
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन है, उनके पास में ज्यादा एक्लेम है, वो एक बुजुर्ग से अंकल है, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, तो आप प्लीज मेरे लिए मुझे दीजिए क्योंकि मैं दो दिन बाद जा रहा हूँ वापस। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर।
0: और ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू।
1: जी जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं।
1: हाँ ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल
0: इसमें हम गाते हैं, तो पता ही आपको।
1: जी जी,
0: तो अब जैसे पता ही है फिर भी मैं आपको एक लाइन गाऊंगा।
1: जरूर बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
1: हाँ हाँ
0: रहमान साहब के गाने का है,
1: हाँ हाँ

0: खोते ही जुगल मन निकले ये गलत बुबादी है।
1: अब तक एक मैंने जब मैं शूट के मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना
0: जी जी
1: मैं बहुत घूमा हूँ मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ लंदन घूमा हूँ यूरोप घूमा हूँ जैसे मैंने कहा इटली में था इटली स्पेशली एक जगह जब मेरा फ्लोरेंस का प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया तो मैं तो दुनिया भर में सब जगह घूमा तो अच्छा आप जब अकेले घूमते हैं तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस है और बहुत अलग अलग चीज़ें मैंने इंजॉय

0: एक जगह जब मेरा फ्लोरेंस का प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया फिर इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने, तो मैं तो दुनिया भर में सब जगह घूमा। तो अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का।
1: बिल्कुल,
0: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस है और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय किया जिंदगी में।
1: क्या बात है।
0: तो अब जैसे ये बांसुरी है, तो
1: एक ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है,
0: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है। ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
1: कहाँ से आई?
0: नॉर्मल जहाँ से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई है।
1: अच्छा अच्छा
0: तो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शन या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है रिटर्न एंड विंड्स। उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011
1: जी।
0: हालांकि ये साउंड उसको पहले ही बना लिया था, रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे। तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है,
1: बिल्कुल
0: इसका साउंड नहीं सुना था।

क्या होता है फ्रांसिस्टिक बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीबी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, वो मैंने किया। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इन टू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाय मी। अब ये एक है और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: बाजनी हर साउंड का अपना बाज होता है, बिल्कुल हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बात समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली भी बजा सकते
1: हो, बिल्कुल
0: साउंड जब उठा रहे कोई उसकी नॉलेज भी जरूरत है ना। अब मैंने आपको मेन सूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जो ध्यान में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश ग्रुप में कैसे साउंड करे। अब देखिए, एक चीज इसका जो स्टाइल है

0: साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा फीलिंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी,
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ,

0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई गई
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही
0: है, बहुत बजाया मैंने इसको, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया
1: जी।
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था

0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आज से क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बात करके मैंने बताया,

0: से आपने बिल्कुल अलग है
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी
0: चाहिए
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से उसके भविष्य से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा
0: आपको, समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी,
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी वगैरह बंद कर देगा मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूँ या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं आज तक।
0: जी जी,
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा माता जोड़ गया अगर रख लेंगे बजाएंगे।
0: वाह,
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको। अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझे कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है
1: जी, गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले
0: जी जी।
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा। पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य

0: इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड सॉल्व हो सकता सुनाई देगा।
1: बिल्कुल एक अलग पहचान।
0: सारे यामा पालनेसा आप सही बजा रहे हैं। अभी मैं आपको इससे दो उदाहरण देता हूँ। सपोज कीजिए सुबह का राग तोड़ी है, अब सारे गामा ऐसे ही बचता है थोड़ी, पर फिर सारे गामा ही है, फिर सरगम ही है,

0: बात अगर इसका प्यार है
1: बिल्कुल
0: ये जो प्यार है ये सर लेट के पैदा होता रहती
1: नहीं
0: या अगर बताया जाता है संसार से बताया जाता है अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती ही नहीं। मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है वो नहीं होती है। तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में और उसको अगर कोई सिखा रहा है बता रहा है पढ़ा रहा है अब चार लोग हैं रूम में एक को समझ में आ रहा है एक को ज्यादा आ रहा है एक को बहुत आ रहा है एक को आ ही नहीं रहा। जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर जब तक वो सेंस नहीं कर पाए। तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है बहुत ही सुंदर बातें हो रही है और पारस जी सबसे अच्छी बातें वो होती है जहाँ और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है
1: आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती ही नहीं है। महफिल को यहाँ रोकते
0: आपका आपका और जगह का ज्यादा रहता है कि मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का बट क्योंकि समय का अभाव ऐसा रहता है।
1: मैं तो
0: आपका भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना तो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा हमने शुरुआत की
1: दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
0: बिल्कुल बिल्कुल तो मैं
1: फरमाइश कीजिए
0: हीरो
1: फरमाइश
0: नहीं तो कॉम्प्लीमेंट है।
1: अच्छा कॉम्प्लीमेंट से हीरो की गाड़ी की फरमाइश।
0: हाँ हीरो मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूँ कुछ।
1: क्या बात है क्या बात है कॉम्प्लीमेंट है
0: कॉम्प्लीमेंट है।
1: जी जी जी जी तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी
1: और आपको भी हीरो कह दिया है
0: मुझे मिसअप कर दिया आपने।
1: जी
0: तो ये हीरो धुन
1: जी
0: स्पेशली डेडिकेशन टू यू
1: शुक्रिया
0: टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
1: जी जी जरूर।
0: वो है ओ माय गॉड का थीम,
1: कृष्णा थीम,
0: कृष्णा थीम
1: जरूर।
0: तो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
1: जी,
0: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
1: जी
0: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती के।
1: बिल्कुल
0: आए सारे आप सब टीम को यहाँ, आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
1: बिल्कुल
0: दिस स्पेशल डेडिकेशन टू दम।
1: बिल्कुल शुक्रिया।
0: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी
1: जी,
0: तो बहुत गुणी आदमी है, तो बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग फॉर ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग सम अनदर फ्लोटिस किसी बाजरे वाले के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में। तो उन्हें परेशान हो गए वो, फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल सारा था। तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है, कम विब्रेटो कहते हैं।

0: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो जब उन्होंने सुना तो मैं पागल हो गया वो सारी बात
1: ओ माय गॉड कृष्णा सीन फॉर एवरीवन

0: क्या है, दो तीन चीज है कुछ फेमस जिसको लोग बोलते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं, शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन सिंगर गा जाते हैं। ऐसे कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है,
1: अच्छा
0: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है। अब जैसे एक वो है कलर्स चलने का थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिस हिसाब से मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था, मेरे पास आज भी सेशन रखा है उसमें मेरा नाम है।
1: ओके,
0: तो ये एक थीम है। और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का,
1: वाह
0: गाने बहुत चल रहा है आपके लिए स्पेशली मोमो के धागे।

आखिरी बजट भारत चुनाव के अपने इस यूथ यूनिट साइन की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण भाई, संपादन बीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

की किताब है तेरे हाथों में, सोच लो क्या करना है। मेरी तन्हाइयों का हिसाब है तेरे हाथों में, सोच

भूल ये कली है बस इसी का इंतजार।

रेशम सहो रिश्ता हमारा।

तो क्या होगा?

0: तीन बातें और मजेदार किस्से
1: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, भजनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार किया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया इतना बड़ा हो गया है।
2: देख देख

दूसरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आज की सुबह को बनाए खास, भूले बिछड़े गीत, हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

Presenting for this edition is Dr. Simon Bentley.

sadece bir sıfır yıla kendilerine.

hemos visto en Dios anterior, o

0: or do I have it to do Sunday or Monkey Bus? प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर
1: मेरी मन की बात सुन में आप मन की बात किसी भी रेडियो को सुझाव देंगे जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो पता रखिए मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001
1: आपको निमंत्रण देता हूँ। मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

Sí, está bien.

आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है,

semplicemente come

that it's an attribute. आज के पंचायत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 से। रात 10 बजे से सुनिए कार्यक्रम

जाती है 5G उसके बाद तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि अभी कभी जितना देरी हो

to make any progress on local

tan mal.

साथ दस्तक सीधा मिनट होने वाले हैं। आइए अब सोचते हैं

प्रोसेस करता है। उनके सीनियर हरिहरन और सुरेश वाडकर को फिल्म मार्केट किया।

Sevgili seyirciler,

हैं संतोष के वास्तव की जल की सतराल का नौकर

अपने घर हो।

ಸಮಾಜ.

0: इनमें से सर बचपन से रहा है, क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? रामो तो बिल्कुल अच्छा था, बताओ क्या बात है?
1: अरे रामा तुम कहाँ इस बहुरूपी के चक्कर में पड़ गई? इतने तो दीदी ये तो मेरे घर में मेरे ऊपर ही क्या कहते हैं वो पेट्रोल डालकर लाइटर लगा रहा है।
0: आप क्यों बढ़िया जी रामो पर बेकारी दोष लगा रहे हो, ये तो बहुत वफादार है, इसीलिए तो पापा ने इसे मेरे साथ भेजा है। उसने जरूर आपके बारे में कुछ ऐसा वैसा देखा सुना होगा। रामो तू बता मुझे क्या बात है?
1: नहीं रामा ऐसी कोई बात ही नहीं, रामू तो भोला सा सीधा सा प्यारा सा बच्चा है। हाँ बेटा रामू, पहले तेरे को चाय चाहिए?
2: हाँ साहब।
1: ओह फिर दूध का गिलास चाहिए?

0: अपने नमूनों को छोड़ गए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, वो अंग्रेज हो या चंगेज हो, हमें क्या फर्क पड़ा। अपन को तो गुटली से मतलब है, आम से खाया हो गए हो।
1: वाह रामू वाह, तेरा भी क्या दिमाग चलता है। वो क्या कहते हैं ना, बिल्कुल सुपर स्पोर्ट पेट की। आज हाँ सुनी जी, आप भी, मैं भी ये सारी चीजें खाऊंगी।
0: हाँ ठीक है, लेकिन महारानी जी उधर सुपर फास्फेट नहीं, सुपर फास्फेट।
1: हाँ हाँ वही वही।
0: अब देखो देखो दीदी, साफ बात बदलने के लाने ऐसी बातें कर रहे हैं।
1: हाँ जी, अब आप भी ये सब फालतू बातें छोड़िए और जल्दी से चलिए चलिए ये सब चीजें बना के लाइए।
0: मुसल में कर दिया है तो क्या करना।
2: ये तो कह रहे साहब, बापू ने

Bye-bye.

0: शीतल करे आबू शीतल होए
1: वाह रामू तू कितना ज्ञानी कितना विज्ञानी है
0: वो तो बचपन से हूँ दीदी
1: देखो जी सीखो सीखो इससे कुछ एक खास है कि सुबह होली में ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं कभी रामू पर तो कभी मुझ पर
0: क्या चिल्लाना सर मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो दिन रात भौंक भौंक भौंक करता रहूं
1: आप कुछ भी बोलो पर रामू है बहुत होशियार
0: हां होशियार है कभी तो भुगत रहा हूं
1: क्या भुगत रहे हो अरे क्या भुगत रहे हो आपकी यहाँ तो कोई नौकर मिल ही नहीं रहा था तभी तो मेरे पापा जी ने इसे यहाँ भेजा एक तो बेचारा दिन रात काम में जुटा रहता है फिर भी आप उसे कोसते रहते हो

0: वो तो मेरी ताई कहाँ है? अरे आज ऑफिस में मीटिंग है।
1: वो ऐसा है कि मैंने आपका सूट आज के लिए रामू को दे दिया है। वो आज कल का क्या किटी पार्टी है ना, और उसमें मुझे गुलाब जामुन बना के ले जाने हैं। और आपके पास तो समय है नहीं। मैंने सोचा कि रास्ते में से ही 10 किलो गुलाब जामुन खरीद लूंगी और उन्हें ले जाने के लिए रामू को साथ में ले लूंगी। अब रामू हमारे यहाँ का यानी कि आपके ससुराल का नौकर ठहरा, यानी इज्जत का सवाल आ गया ना, किसी से कम न पड़े वो वहाँ पर। इसीलिए मैंने उसे सूट और टाई पहना दिया। क्यों जी, कैसी रही मेरी प्लानिंग?
0: वाह, क्या प्लानिंग! तुम अपनी प्लानिंग को करो और मेरी इज्जत का फौजदार बना दिया हो। अरे ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे, एक सूट टाई भी नहीं है मेरे पास। लो साहब, इतनी सी बात को परेशान हो रहे हैं आप? अरे कह दियो कि घर से सूट पहन के निकले ऐसे।

0: भी पहन के आता और दीदी आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ।
1: और हाँ आप भी सुन लीजिए, शाम को सरिता के घर होते हुए आना, शाम का खाना उसी के घर है।
0: यानी कि बेइज्जती पर बेइज्जती। सबसे ख्याल करना कर पाना है कि कुछ हम तो करना ही पड़ेगा।

0: Только много.
1: Обидал, обучал, помогя. Ача, сосвалка много. Сабито улачал, урхабло шамбикай. Леги ментал, ищи апунтаду, ищи. Аб апни хэльбрин по хэльбрин ки тара лаги на. Дедес мужи маф карду. ये तो मेरी बेवकूफी के कारण हुआ। मैंने रामू को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा दिया था।
0: हाँ, बेवकूफी के कारण मुझे कितनी जिल्लत उठानी पड़ी। एक मामूली से चौकीदार ने मुझे बेइज्जत किया।
1: नहीं दिनेश, ऐसा मत बोलो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपको अपमानित करने या करवाने का। जो हुआ वो मेरी नादानी थी। मैं भूल गई थी कि हर आदमी की अपनी हैसियत होती है। एक दर्जा होता है, नौकर नौकर होता है, पति पति होता है। मुझे माफ कर दो दिनेश।
0: नहीं
1: दिनेश, मैं बहुत
0: बिल्कुल

शुक्रवासियों की मिट्टी ये जल की धनी निर्देशक थे राकेश ढांडिया। आकाशवाणी भोपाल केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हो।

Attention vibe. Didn't pay the bill. Vivid party bus.

the paper mask and they went into this in the side, got them 2 glasses and put in here. Sir Bharti के देश ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए और महिला क्रिकेट में भारत आज रात लंदन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की गुण सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्ष

होकर खोल दिया है। ये सुविधा केवल 19 छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन के लिए प्रतियां प्राप्त करी है।

से लंबे विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए

0: अच्छी मामले से तो फिर इसी तरह या तीसरे पक्ष की कोई चिंता नहीं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के अनुचित हमलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को स्वीकार करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अधीन

godi che sta che viene che come

सीखा कि उपराष्ट्रपति सिपोकोसा मार्केटिंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सी के राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों

अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु पर सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं। उन्नत रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति श्री नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचिदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के शिक्षक पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें मंगीलाल, विकास विवाद, दिलीप विवाद और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। खुला परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बेस ओटीटी की नवम्बर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या

पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। खासा थोड़ी समाचार, पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर

प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को सीबीएसई में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने केवल यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रिक मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत केवल 5 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता से यह सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिला शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार 11 बजे शुरू होगा। अंत में कुछ समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया।

सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कपूर की शुरुआती फिल्मों में से ज्यादातर फिल्मों में उनका स्क्रीन नेम राजू यही रहा है या राज रहा है, लेकिन उनके माता पिता ने इनका नाम रखा रणवीर राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के पेशावर शहर में इनका जन्म हुआ पृथ्वीराज कपूर के घर में। पृथ्वीराज कपूर पहले से ही थिएटर से जुड़े हुए थे, आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई और ऐसा ही कुछ करना चाहते थे राज कपूर। जब बड़े हुए तो उनका ध्यान फिल्मों में ज्यादा लगता था। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राज कपूर को देखकर पृथ्वीराज जी अक्सर कहा करते थे,

ये सब देखकर पृथ्वी राजीव गिरी की पापा जी कहा जाता था, उन्होंने उस दौर के सफल निर्देशक केदार शर्मा जी से मुलाकात की और कहा कि भाई राज बहुत कुछ कर नहीं रहा है और मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास भेज दीजिए, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए। इस तरह से राज कपूर साहब केदार शर्मा साहब के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें अपना सहायक बनाकर रख लिया और वहाँ शुरुआती जो उनका काम था वो क्लैब दिया करते थे केदार शर्मा जी के प्रोडक्शन में। यहाँ से उनकी जिंदगी की जो शुरुआत है यानी करियर की जो शुरुआत है एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन फिल्मों के काम में जिस तरह से राज कपूर ने मन लगाकर काम करना शुरू किया ये देखने के बाद पृथ्वीराज जी थोड़े अचंभित हुए और फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले से ही कहा था कि राज फिल्मी दुनिया में बहुत शानदार काम करेगा। ये बात अलग है कि आज केदार शर्मा ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं

सहायक के रूप में काम कर रहे थे निर्देशक केदार शर्मा के साथ। और केदार शर्मा ने एक दिन, बल्कि क्या अक्सर वो इस बात पर गौर किया करते थे कि राज कपूर जो है वो हमेशा आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सवार करते हैं या अपने आप को अलग अलग एंगल से देखा करते हैं। और उनकी बातचीत और उनके विचारों के जरिए भी केदार शर्मा ने ये महसूस किया कि इस लड़के में एक्टर बनने के गुण ज्यादा हैं। और बस उनको समझ में आ गया ये लड़का एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। बस फिर क्या था, 1947 में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो लेकर फिल्म बना दी वीर। कमल में राज कपूर के साथ हीरोइन थी मधुबाला। और ये सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों ही कलाकारों ने आगे जाकर हिंदी सिने संसार पर राज किया। आज भी राज कपूर और मधुबाला के बिना हिंदी फिल्मों के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल फिल्मों में राज कपूर की जो पाली 1947 में शुरू हुई बतौर नायक, वो कहीं ना कहीं राज कपूर के लिए भी सिर्फ एक स्टार्टिंग वाली बात थी। उनको तो पता था कि उन्हें आगे जाकर बहुत कुछ करना है और इसकी शुरुआत 1948 में ही उन्होंने कर दी। उन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और हीरो फिल्म पेश कर दी

बाद ग्रस्त रहे और राज कपूर की अपनी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं करी। लेकिन राज कपूर घबराए नहीं, 1949 में वो लेकर आ गए आज की सारी तपेई बुझाई।

कला लेकर आई और इसी के साथ राजकपूर की एक नई टीम बनी। संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार दशरथ जयपुरी और शैलेंद्र, और ये फिल्म लिखी थी रामानंद सागर ने, जो आगे जाकर बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बने। तो फिल्म बरसात रामानंद सागर ने लिखी थी और इस फिल्म की नायिका भी नई थी निम्नी, और कैमरामैन राधु करमरकर। राधु करमरकर ये वही कैमरामैन है जो आगे जाकर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के निर्देशक बने। इसके प्रोड्यूसर भी राज कपूर ही थे। तो मैं बात कर रहा था फिल्म बरसात की। बरसात में सिर्फ अदाकारी और कहानी ही नहीं, उसका संगीत भी इतना बेहतरीन था। आज भी यूं लगता है जैसे बारिश की बूंदें टप टप टप गिर रही हों, इतना तरोताजा

1950 में राज कपूर की 6 फिल्में आई और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 6 फिल्में एक साल में राज कपूर की 1950 के बाद फिर कभी नहीं आई। बहरहाल इन 6 फिल्मों में नरगिस, गीता वाली, सुरैया, निम्मी और रेहान

फिल्में सुपरहिट फिल्में रही और इन फिल्मों के सुपरहिट होने के कारण उस समय के जो दिग्गज निर्माता निर्देशक थे महबूब खान, चिराग शर्मा, नितिन बोस, बिमल रॉय, महेश कौल, वी शांताराम, इन सबको कहीं ना कहीं लगता था कि हमारे चक्कर में कोई आ गया है। लेकिन फिर भी राज कपूर ने अभी वो मयार हासिल नहीं किया था, वो ऐसा खुद समझते थे और उनको लगता था कि मुझे अभी एक ऐसी फिल्म तो जरूर बनानी है कि मैं इनकी श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाऊं। और

फिल्म आवारा की लोकप्रियता ने राज कपूर को देश ही नहीं विदेशों में लोकप्रिय कर दिया। भारतीय फिल्म संगीत देश की सीमाओं को लांघकर गूंजने लगा और आज भी कई देशों में ये फिल्म अपनी पहचान बनाए हुए है। अब बात 1952 की। बतौर नायक राज कपूर की चार फिल्में इस साल रिलीज हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। और इन चारों ही फिल्मों में उनके साथ थी नरगिस और चारों

सब सीखी वाली फिल्म थी, क्योंकि आ फिल्म में ऐसी हर वो बात थी जो एक फिल्म की सफलता की गारंटी बन सकती थी, जो एक फिल्म को सफलता की सीढ़ियों पर ले जा सकती थी। लेकिन बावजूद

प्रभु साहब पर हमने कुछ बातचीत की। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से, स्वर शोध और आलेख अमर

बेबहारे मोहब्बत होती रही, पर मुलाकात में शिकवे शिकायत के रंग घुल गए। त्रुटने मनाने का सिलसिला तेज हो गया। नतीजियां दूरियों में तब्दील होने लगी, नजरें खफा हो गई, पारदर्शी दिल पर धुंध छा गई, गुफ्तगु खामोशी में बदल गई और फिर जिंदगी को उदास

इश्क का मिलन होता है तो समझ जाती है जिंदगी। इश्क में जब दिल जकड़ जाता है तो जिंदगी की परेशानियां आसानियों में बदल जाती है। लेकिन जिंदगी कभी एक सुर में नहीं जाती। जिंदगी के घाट पर विविध रंगी राग गाए जाते हैं। जिंदगी के समीकरण डगमगाए और प्रेम राग उदास राग में बदल जाता है।

बदलता है प्रेम का मौसम, काली घटाएं गिराती है, जिंदगी की राहें भटक जाती है, कांटों का लंबा सफर बन जाती है, मोहब्बत भरी बातों में तकरार के अल्फाज खास हो जाते हैं, मोहब्बत के लिए वक्त कम पड़ जाता है, तकरार की घड़ियां लंबी हो जाती है।

और टकराव से मिल बनती है, पर जिंदगी तभी लुभावनी लगती है जब मोहब्बत भरे लम्हों से आवाज होती है जिंदगी। दो दिल रोकते हैं

उसका नाम लिखा था। डायरी के हर पन्ने पर उसी की बातें दर्ज हो गई। जीवन के बहुत सारे रास्तों को देखा, सबसे खूबसूरत रास्ता वही लगा जिस पर पड़े थे उसके कदम। लेकिन अचानक वक्त ने करवट ली, उसके कदम तेज हो गए और आंसू की बजाय हवा में उड़ने लगा।

बच्चों के गांव में एक आशिया बनाया था, मन्नतों के धागे से गोती की प्रेम की माला, मुश्किलों की आंधी ना आ जाए ये सोचकर सदका उतारा था। नीली आंखों की नदी में सुनहरे ख्वाब पलाम पाते थे, परी गोज काली घटाए थी, नैनों में नदी गिराई, बरसने लगे नैन, होठों पर उदासी की बूंद ठहर गई।